अज दा 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नाम लेवा गुरु सिख संगतां वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दे दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन चरण कमलों के कौतकों राही पवित्र हुई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ के 300 साल साजना दिवस की स्वयमान परी याद में सदीवी बनाने लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती नू 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद विच चक माता नानकी का नाम दिता। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र के गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नू अपने दर ते आए कश्मीरी पंडितां दी बेनती ते समुची मानवता ते विशेष करके हिंदुस्तान वासियां दी धार्मिक सभ्याचार अते समाजिक आजादी नू बरकरार रखण लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। ते इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों 9वें पातशाह हजूर दा गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया से। इस पिछों तां लासानी रूहानी कौतकां दी चढ़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखां नूं अणख गैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करन उपरंत गुरु दर तों आनंद प्राप्ति की रीझ रखण वालिया ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा 10वें पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। ओ पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमय जिंदगी जीउ सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सन 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पाहुल राही सीस भेट करन वाले 5 गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आ आप उन्हां अगे सीस निवाउंदे आ आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां

रोंदे नूं नहीं थक सकदा। जिहड़ा गुरु दा सिख है बांह फड़ लैंदा, अपने शरीर ते भावें दुख सहना पै जावे, शरीर ते कष्ट जर सकदा है, पर दुखीए दा दुख निवृत कर देंदा। भाई कमलीए वर्गा राजे दा वजीर वजीर खां कोड़ी हो गया, ऐसा दुख लग गया, राजे ने भी शहर तो बाहर कढ दिता है, पर भाई कमलिया बंदगी करन वाला नाम जपण वाला सुखमनी साहब दा पाठ करदा जांदा। वजीर खां दे कन्नां विच जदों बाणी पई तन मन ठंडा होया, आवाज मारी ओ सिखा अकीदी कलाम पढ़दा, आ बाणी सुनदिया मेरा तन मन ठंडा हो गया। ते भाई कमलिया परपकारी कोल बह के सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, फिर इथों तक अपने मोढ़िया ते चुक के गुरु अर्जन देव पातशाह दे दरबार में लिया के दुख दूर कर दिता है। भाई कमलिए ने ऐसा परपकारी ओ कोड़ी वजीर खां वर्गे जिन्हां दा शरीर कंचन वर्गा कर दिता, फड़ लई बां दुख दूर कर दिता। पर आओ भाई सिखां दा तां प्यार ही इहो जिहा, भावना ही इहो जी, हिरदे विच परपकार दा बीज बोया हुंदा है, इस वास्ते बां फड़ लईए। दुखियां दा दुख नहीं हो जरदे, रुड़दे जांदे दी बां फड़दे, पर मुख तो सतनाम जप के वाहिगुरू वाहिगुरू कह के फिर भी मन नीवा मत उची। आओ भाई सिखां दा, पर जिहड़ा सिख बन जावे भेखी सिख नहीं, विखावे वाला सिख नहीं, जिहड़ा अथिक अंदरों सिख है, जिहदे हिरदे विचों प्यार है, बस वो प्रगट ही नहीं करदा। वो तां कहिंदा ही नहीं, वो तां कहिंदा मैं अजे सिख बनिया ही नहीं, क्योंकि गुरु का मार्ग ही ऐसा है, गुरु के पाए हुए पूरनिया ते जिहड़ा सिख चलदा है, बस वो तां मन नीवा मत उची, कि जिन्हां ते गुरु बख्शिश।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना, ये पूर्ण सिख दी निशानी, ये पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे? आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए, तन मन धन दा माण।

आप बाहर आ जा। भाई मंज खूह विच खलोते आई, ए नहीं पता कि शायद तां गुरु अर्जन देव पातशाह बचन कह रहे। खूह विच खलोते आ कहन लगे, ओ सिखा जे मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दियां लकड़ां हन, पहला लकड़ां नू बाहर कढ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा, किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे। इस वास्ते ते लकड़ां चुकी खलोता किते लकड़ां गिल्लियां ही ना हो जाए, अज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे। जदों भाई मंझ जी ने कहा ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा फिर मन भरिया, कहण लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन, आ रूप है सिख दा जिन्हां दे हिरदे विच भावना है जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है, क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां, क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे, गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे, परवाह नहीं करदे। ओ भाई मंझ ते इम्तिहान दा परचा तां पिया, पर भाई मंझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया। भावी ने से ऐसी खेल खेडी है, पर हुण भाई मंझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाई, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर किधरे नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लैना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदों रोमां विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों श्वासां विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुणदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इस शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबंत कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, यह किवें हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नार की गल करता, कोई उसनू इलाही नार की गल कह के करता, कोई किसी ढंग नाल दसता है, लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त भी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर यूं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापदा है। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करता, कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चों वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चों के अंदर यह शौक पैदा करता जाता है, बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़िया तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर पर बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लगे आ बहुते तां रोंदे भी वेखेगा, उन्हूं एक बार धक्के स्कूल पहुंचा पैंदा, उत्थे जाके बहिंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाते हैं उसकी समझ तो बाहर आता है, वो पहला पहला बड़े परेशान होता है, पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर है वो बोझ जापते हैं, लेकिन चार दिन बाद वो जिहड़ा बोझ है वो ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते हैं। उन्हें अक्षर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे उसकी मन की शांति नहीं बनती, यह संसारी पद्धर की गल। धर्म के मार्ग से भी ऐसा है, शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता है, नितनेम भी बोझ जापता है, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती है। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदा इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापते। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वह बेनती की है कि स्कूल च जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, वह वरिया बत्ती पंद्रह पंद्रह भी वरे बोझ ही धोते पढ़ते भी, किताबां नाल मत्था मारदे ने, रोंदे दुखी होंदे, कई वारी वह फेल हो जाते, ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो बशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे, ते फिर उनके माता पिता उनका आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा है, बगार कसदा है, तू कसीट के तुरिया आउंदा, वैसे पढ़न वाली गल कोई, बिल्कुल इसे तरह साडी गल।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋਕ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਣਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਦਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ

कदी लोधी पठाणा दा गुलाम रहा और इन्हां ने हिंदुस्तान दे लोकां ते बड़े जुलम भी कीते और हिंदुस्तान दे लोग एक गुलाम सन मुगलां दे दूसरा जातां पातां विच ऊंच नीच विच वंडे हुए सन इस करके इन्हां दे विच एका नहीं सी ब्राह्मणा दा बहना उठना वखरा शूद्रां दा बहना उठना वखरा जिस वक्त औरंगजेब दा राज हिंदुस्तान ते होया ता इसने ए ऐलान कीता कि हिंदुस्तान दे विच इको ही धर्म रहेगा और वो है इस्लाम धर्म। औरंगजेब ने हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कीता, मंदिर तोड़ने शुरू कीते। उस वेले कश्मीर के ब्राह्मण श्री आनंदपुर साहब

सिंह कहन लगे बीबी कोई जरूरी काम है। कहन लगी हां। एक सिंह कहन लगा तू इथे खड़ी हो मैं पूछ के आ गया। थोड़ी देर बाद पहरेदार सिंह वापस आया। कहन लगा बानो तंबू अंदर चली जा। हरि सिंह नलवा

अगर मेरा कोई कुत्तो रोवे तो बिल्कुल हरी सिंह नलवे वर्गा होवे। सिंह साहब ने फिर कहा, बानो शकलां विच की है, पुत्र किसे भी धर्म का होवे, किसे भी मजहब का, उहदी कहो जी भी शकल होवे, नेक होना चाहिए। बानो कहन लगी, नहीं तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए, तुसी मेरे नाल निकाह करा लो, व्याह करा लो। उस वेले हरी सिंह जी उठ के खड़े हो गए, गुस्से नाल अखां लाल हो गई, कहन लगे, बानो जा चली जा, तू मैनू डेगण आई है, साडे गुरु दा हुक्म है, एका नारी जती होए पर नारी ती भैण बखानी। जद ए गल कही बानो वापस मुड़ी, पर वापस मुड़दी ने एक ता ना मारे। कहन लगी, हरी सिंह मैं सुने है कि गुरु दे घरों कोई खाली कदी नहीं मुड़े, ये भी सुने है कि सिख दे घरों भी कदी कोई खाली नहीं मुड़िया। अज ये गल झूठ हो गई है, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली, ताना मारे है। हरी सिंह कहन लगे, बानो ठहर जा, गुरु दा घर उथों ते कदी कोई खाली नहीं गया, गुरु दा जिहड़ा सिख है उहदे घरों भी कदी कोई खाली नहीं गया। पहरेदार सिंह नूं आवाज मारी, पहरेदार अंदर आया, हरी सिंह जी कहन लगे, जा सिखा। दूसरे तंबू विचों

निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। उस सहज अवस्था नूं प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, किस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख दा अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दियां पैड़ां गुरु नानक ने छड़ियां ने। तुसां वेखिया है कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना उहदे पैरां दे निशान पैंदे ने, दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेख्या होवे इधर उधर झाकदा है, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा, पैरां दे निशान डबल हो जाण दोहरे हो जाण। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए, जिसने तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाए, जिसने हजारा लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाए। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते एक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिल के गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बड़ी बनाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना है, जिहड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा है या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहंदे ने

गुरु की संगत, आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नूं कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए की

तेरे जेने गुण ने तू इनी बाणी पढ़ता है, शस्त्र विद्या भी सिखदा पिया, गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पिया। एक गल दस, संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं? क्यों मांज रहे ध्यान देना। ये बड़ी गुण जड़ा ना, ये माधो साधु जन दो मिला।

मैं तेरा सुभा नहीं बदल सकता। हूं सुभा ही बदल की गल हो जाए तो कंस का बदल देने लड़न की लोड़ ही नहीं, एडी योदे जान की लोड़ ही नहीं। कहन लगे मैं तेरा सुभा नहीं बदल सकता, ध्यान देना। ते काली नाग कहंदा जी गेंद तुहाडी डिगी भला मेरा होया, ते बस मेरे नाल चोज करके चल जाओगे। निकी जी गल लैनी बस। कृष्ण जी कहंदे मैं तेरा सुभा नहीं यार वर्गा बदल सकता। वो कहंदा जी हुण गेंद भी डिगी आए भी हो तुसी नहीं बदल सकते। गल पकड़ ली

बाबा जी ने फिर ताड़ना की, कहते बिल्कुल ठीक, लेकिन कित लिखे गुरु ग्रंथ साहब आखो साधना, गुरु ग्रंथ साहब के लफज नचोड़ कढो गरीबी की पढ़ाई, गरीबी की सत बचन की पढ़ाई, निम्रता की पढ़ाई। कहने लगे सानू कहते फारसी सीख गया, लेकिन बिल्कुल ठीक इथे ते सत बचन की पढ़ाई, कोई गल कहनी सत बचन जी, अच्छा जी सत बचन जी, एडी बरीकी कढ़ दे लफजां च भी गरीब।

दो तीन तीन दिन तुहाडे कोलो बाहर कोई गुरु सेवा लैके आके घंटा जोड़े झाड़िया करो। वो किस वास्ते के सच्चा पातशाह असी जोड़े झाड़ना लई आ साडी सेवक बन के बीत जावे इहदे नाल ना जी वाड़ लग जांदी जिथे तुसी हो गए आए हुंदे ना उत्थे वाड़ लग जांदी वाड़ तुहाडी निमरता नाल उत्थे वाड़ लग जांदी गुरु इहनूं मैं दस नहीं सकदा लफ़्ज़ां इशारा लैणा जितने असी बैठे हां बाबा दीप सिंह जी दा गुण हुण बारिश हो गई है ते अगला सवाल जवाब बड़े प्यारे है कैसा सीन होएगा मालक खड़ा होवे बाबा जी दे हाथ सवा ना लिबड़े होण कोला हाथ फड़िया होवे ते ऐ सवाल कीता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि कोले क्यों मांजदा पिया दीप सिंह उन्होंने कहा जी सेवक बन के बीज मैं करता ना बन जा हूं अगला सवाल बाबा दीप सिंह जी का जो अगली बारी साझा करा उन्होंने किया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा हो गई है हुण कोल खड़े हो ते मेरी भी एक सवाल जेड़ा ना वो आप जी कृपा करो ओदा मैनू जवाब झोली च पाओ ते ओ सवाल सी कि गुरु की खुशी किवें लई दी है सतना बाबा दीप सिंह ने सवाल किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि मेरी भी एक दिल च सवाल है भी सोचा सी अज पुछदा कल पुछदा है ते बाबा जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी दस की पुछदा है दीप सिंह कहंदे जी मेरा सवाल है कि गुरु की खुशी किवें लई दी है गुरु की खुशी किवें मिलदी है वो जेड़ा जवाब गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता वो अगले वीरवार आपको सतनाम बाबा जी सेवा लैन क्योंकि वह भी बन जाना यो 26 जनवरी तो बाद नेड़े नेड़े ही आ जाना प्रसंग यो ही चलना ते आज ते वो गल बन गई जेड़ा टेलीविजन सीरियल आली वो ही सीरियल इत्थे करके मुकांदे आ कि बीबी कहंदी हुण लाणा ही पैणा कल की होना है जी जेड़े बारिश करके गड्डिया च बैठे आ जां चारे मगर चले गए आ या रिश्तेदारी करके आए आ जां जेड़ा परिवार करा रहा जे ते सारा किनका करंट लग जे फिर कहिंदा हुण अगले वीरवार आना जरूर है भी गुरु गोबिंद सिंह ने की जवाब दिता गुरु की खुशी